0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: मेरी एक फ्रेंड है जो अक्सर बेहद खुश रहती है। जब उसे मैंने पूछा कि उसके लिए खुशी के मायने क्या हैं और वो उसे कैसे हासिल कर लेती है, तो पता है शी सेड कि जहनी सुकून तभी मिलता है जब कोई टेंशन ना हो, आपका दिमाग तमाम उलझनों से खाली हो और आपके दिलो दिमाग एक ही चीज पर राजी हो। एंड शी सेड कि अपनी बात करूं तो जब कोई टेंशन हो जाती है ना मुझे, तो उसको जहन से निकाल कर बाहर फेंक देती हूं और फिर उस सुपर पावर से तन्हाई में अपना दुख बांटकर सब कुछ उन पर छोड़ आराम से सो जाती हूं।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: ਆ ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ
2: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ
4: कहते हैं बात हमेशा खुलकर कह देनी चाहिए ताकि किसी किस्म की भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न रहे क्योंकि अजम्पशंस पर अगर कोई रिश्ता बेस्ड होता है ना तो वो दोनों बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं आप भी सामने वाला भी काश कि तुम नम आंखों से बस इतना कह देते मैं खामोशी से सुन लेता गम सह लेता दुख चुन लेता कुछ दर्द के आंसू रो लेता तुमसे शर्मिंदा हो लेता तुम कह ना सके हम रो ना सके तुम्हें अफसोस है हम शर्मिंदा पर बात क्या हुई दोनों ही शब भर सो ना सके

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: मिलना बिछड़ना चाहे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पर कभी कभी कोई शख्स आपकी जिंदगी में ऐसा आता है जो पता होता है कि ज्यादा साथ नहीं निभाएगा, पर फिर भी उससे जुदा होने का जस्ट एक ख्याल ही मन में आता है ना, तो रूह सी कांप जाती है। लगता नहीं कि साथ निभाएगा देर तक, लेकिन वो मुझको भी भूल ना पाएगा देर तक। जब भी करीब आएगा उसके कोई शख्स, जरूर वो मेरी दास्तां सुनाएगा देर तक। किस हाल में मैं हूँ उससे बिछड़ने के बाद, सुन के उसे यकीन आएगा देर तक।

कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज। इतना आसान नहीं होता किसी को भुलाना, चाहे आप उस इंसान से कितने भी खफा क्यों ना हो, क्योंकि एहसास पता है बायस्ड होते हैं। तुम्हारा नाम लिखता हूँ मैं कागज पर, देखता हूँ, सोचता हूँ, वो कागज फाड़ देता हूँ, फिर उस कागज के टुकड़ों को मुट्ठी में भींच कर फेंक देता हूँ, वहीं पर बैठकर लड़ता हूँ खुद से, पर फिर न जाने क्या सोचकर वही कागज उठाता हूँ, मैं आंखों से लगाता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, फिर उसको पानी में मिला उसको तावीज़े मोहब्बत जानकर पी लेता हूँ, गुस्सा, गिला, नाराजगी जो भी है तुमसे सब पी लेता हूँ और आंखें मूंद कर सो जाता हूँ।

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: डेल कार्नेज ने अपनी किताब में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कही है. उन्होंने खुशी के बारे में लिखा है कि हैव यू एवर कम अक्रॉस अ सैड हॉर्स और अपसेट बर्ड्स. नहीं ना, वजह पता क्या है, ये कभी अपसेट होते ही नहीं है. और उसकी वजह क्या है, बिकॉज इनकी फितरत बाकी बर्ड्स या एनिमल्स को इम्प्रेस करने की है ही नहीं, और हम इनसे बिल्कुल ऑपोजिट हैं. हम सारी जिंदगी बाकियों को खुश करने में निकाल देते हैं. हमारी ड्रीम्स, हमारे डिजायर्स, इनको तवज्जो, इनको अहमियत तो हम खुद ही नहीं देते, तो बाकी क्या देंगे. इंटरेस्टिंग है, कभी अकेले में बैठें तो जरूर गौर करें इस बात पर.

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को भी खबर न हो वो बड़ा रहमो करीम है मुझे ये सिफत भी अता करे तुझे भूलने की दुआ करूं तो दुआ में भी असर न हो वो फिराक हो या विसाल हो तेरी याद महकेगी एक दिन वो गुलाब बनकर खिलेगा क्या जो चिराग बनकर जला न हो कभी दिन की धूप में झूम कर कभी शब के फूल को चूम कर यूं ही साथ साथ चले सदा कभी खत्म अपना सफर न हो जी हाँ चाहती तो मैं भी हूँ कि बातों और गीतों का ये सफर कभी खत्म न हो बट वॉट टू डू हैव टू टेक दिस म्यूजिकल ब्रेक एंड आई विल बी बैक वेरी सून विद योर वेरी ओन शो कल्चर ऑफ पंजाब विच इज ब्रॉट टू यू बाय देवदत्ता

0: पिक्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज।
1: अच्छा, यादों की बात करें तो कभी कभार बहुत उदास कर जाती है ये, जाहिर सी बात है, क्योंकि आज किया किसी ने फिर से जिक्र तुम्हारा, हल्के हल्के से फिर तुम याद आने लगे, मैं फिर से पुरानी बातों के समंदर में डूबने लगा, पलकों के दरवाजे को बंद किया मैंने जब, आंसू बनकर तुम आंखों से फिर से बहने लगी, बेबसी इतनी कि फिर से मेरे हाथ उठ गए दोबारा खुदा से तुमको मांगने के लिए।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: बहुत से शायरों ने अपने अपने अंदाज में अपनी सोच के मुताबिक डेफिनेशन रखी हैं हमारे सामने हर मुद्दे पर, चाहे वो जिंदगी हो, मौत हो या फिर मोहब्बत। ख्वाब झूठे किसी को दिखाया नहीं करते, एक बार जब किसी को कह दो अपना दामन फिर उनसे छुड़ाया नहीं करते। उसके इंतजार से भला क्या होगा हासिल, आने का कहकर भी जो आया नहीं करते। रखते हो जो दर्द भरा दिल अपने सीने में, दूसरों का दिल फिर वो दुखाया नहीं करते। दो कदम साथ चलकर जो जुदा हो जाएं, ऐसे लोगों को हम सफर बनाया नहीं करते। किस तरह से गुजरती होगी जिंदगी उनकी, जरा सोच के देखें। पहली मोहब्बत को दिल से भुलाया नहीं करते।

बात करने जा रही हूँ एक सफर की, बीते हुए दिनों की, फीलिंग्स की। हर वक्त हर पल तेरी याद मेरे साथ रही, हर लम्हा तुझे मैंने अपने दिल के सबसे करीब पाया है। तेरे साथ गुजारे हर पल आज भी जब आंखों के सामने आते हैं तो जिंदगी फिर से खिलखिला उठती है, मैं फिर से जी उठती हूँ, तुझे फिर से अपने साथ पाती हूँ, फिर से महसूस होता है कि जिंदगी में कोई गम नहीं। फिर से वापस लौट जाती हूँ उस जगह जहाँ तेरे साथ हंसी पल गुजारे, हंसे खेले और जिंदगी के मायने समझे, कुछ सपने देखे, कुछ वादे किए, इतना हंसे कि गम भूल गए और इतना रोए कि मजबूत बन गए।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: जिन खूबसूरत लम्हों के बारे में सोचती हूँ जिन्हें मैं याद करती हूँ वो पल सूखी रेत की तरह हाथों से फिसल जाते हैं सच्चाई तेज धूप की तरह आंखों में चुभ जाती है छोड़ जाती है खाली हाथ और आंखों में नमी और वही यादें और एक वादा वादा कि ये यादें हिस्सा है मेरा नहीं जाएंगी मुझे छोड़कर कभी कल्चर ऑफ पंजाब में मैं प्रीत बातों के सिलसिले को लगाती हूँ एक छोटा सा कॉमा एंड आई विल बी बैक वेरी सून आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक